0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। चीन ने जापान के खसूसी इक्तसादी जोन में उसके सबसे जनूबी जजीरे के करीब चीनी बहरिया के एक जहाज के लाइव फायर मश्क करने पर जापान के खदशात को मुस्तरद कर दिया है। जापानी हुकूमत ने तस्दीक की है कि इतवार के रोज एक चीनी मेजाइल डिस्ट्रॉयर ने बहरुल काहिल में ओकिनोतोरी शीमा जजीरे से 180 किलोमीटर जनूब मगरब में जापान के खसूसी इक्तसादी जोन के अंदर मशीन गन चलाने की मश्क की। टोक्यो ने अपने खदशात को सफारती जराए से बीजिंग तक पहुंचाया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मंगल को मामूल की न्यूज कॉन्फ्रेंस में जापान के एतराजात को बेबुनियाद करार दिया। ओकिनोतोरी शीमा का हवाला देते हुए उन्होंने चीन के साबिका मौकफ को दोहराया कि यह एक चट्टान है ना कि जजीरा, और यह खसूसी इक्तसादी जोन जबरियाजमी शेल्फ रखने का हकदार नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि खुले समंदरों में बीजिंग की सरगर्मियां बैन अल्कवामी कवानीन के मुताबिक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जापान दूसरे ममालिक की जायज और कानूनी कार्रवाइयों को बदनाम कर रहा है और बैरूनी खतरे के खौफ को हवा दे रहा है। उन्होंने जापान पर इल्जाम लगाया कि वो अपने दोबारा मुसल्ला होने के अमल को तेज और जंग के बाद के बैन अल्कवामी नज्म को चैलेंज करने का बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जापानी हुकूमत का कहना है कि वो इलाके में निगरानी और कड़ी नजर रखने की अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी। फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के हक में वोट दिया है। सितंबर में नाफिज होने के बाद ये यूरोप में ऐसी पहली पाबंदी होगी। फ्रांसीसी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों सेनेट और कौमी असेंबली ने मंगल को इस कानून की मंजूरी दी। इसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर नए तालीमी साल के आगाज यानी सितंबर से सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर पाबंदी लग जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मौजूदा अकाउंट्स बंद करने के लिए जनवरी तक मजीद 4 माह की मोहलत दी जाएगी। इन प्लेटफॉर्म्स के लिए जरूरी होगा कि वह उम्र की तस्दीक के लिए फ्रांस के प्राइवेसी रेगुलेटर का मंजूर करदा डाटा इस्तेमाल करें। उम्र की बुनियाद पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की पाबंदियां मुतारिफ करवाने के इकदाम बच्चों पर इन प्लेटफॉर्म्स के मुमकिन मनफी असरात के हवाले से बढ़ते हुए खदशात के अक्कास हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद की। यूरोपीय यूनियन भी कवायद पर गौर कर रही है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेन का कहना है कि मौसम गर्मा के बाद एक खास मंसूबा तजवीज किया जाएगा। जापान के कदीम दल हुकूमत नारा में सियाहों ने फ्रांसीसी हॉर्न यानी बाजे पर बजाई जाने वाली मौसीकी से जंगली हिरनों को एक साथ बुलाने के अमल का लुत्फ उठाया है। 100 साल से पुरानी तारीख के हामिल इस इवेंट को शिकायो से कहा जाता है। इसका इनेकाद हर साल बहार, मौसम गर्मा और सर्दियों में महदूद वक्त के लिए किया जाता है। इस साल मौसम गर्मा में हिरनों को बुलाने का अमल 19 जुलाई को शुरू हुआ। हिरनों के तहफ्फुज़ के एक ग्रुप के रुकन की जानिब से बाजे पर बेथोवेन की पास्टरल सिम्फनी बजाए जाने पर तकरीबन 100 हिरन लोगों की नजरों के सामने भागते हुए कासुगा ताइशा श्राइन के मैदान में निकल आए। हिरन शाबलूत खाने के लिए धक्कम पेल करते रहे जो ग्रुप के मेम्बरान उन्हें खिला रहे थे। इस मौसम गर्मा में हिरनों को बुलाने का इवेंट 6 सितंबर के अलावा 27 सितंबर तक हर इतवार को मुनाकिद होगा।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। जापान बदस्तूर गर्मी की एक शदीद लहर की लपेट में है। हवा के ज्यादा दबाव के एक मौलक निज़ाम के बायस दर्जे हरारत मुसलसल दूसरे दिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है। और एक सिक्योरिटी फर्म का कहना है कि एक हैकर ग्रुप ने इस माह के शुरू में जापान की बड़ी मुंजमित फूड कंपनी निचिरेई पर होने वाले साइबर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कीव में कई दिनों से जारी अवामी मुजाहरों के बाद फौज के कमांडर इन चीफ ओलेक्सेंडर सिरिस्की को बरतरफ कर दिया है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 21واں سبق اپنی موجودگی کا مقام بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کنوینئنس اسٹورز کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام اور میاں ہوکائیدو میں ہیں۔ آج وہاں کے ایک مقبول سیاحتی مقام سپورو گھنٹہ گھر میں کائتو سے ان کی ملاقات طے ہے۔ باہر چونکہ خاصی ٹھنڈ ہے، اس لیے وہ ٹاور کے اندر انتظار کر رہی ہیں۔ اس دوران تام کو کائتو کا فون آتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 21 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: काइटो टॉम को फोन करता है।
4: もしもし、タムさん。
0: हेलो टॉम सान,
4: इमा दोको नी इरुनो?
0: अभी आप कहाँ हैं?
1: टॉम जवाब देती है,
3: टोके दाई नो नाका नी इमास।
0: घंटा घर के अंदर हूँ।
1: काइटो कुछ हैरत से कहता है,
4: ए नाका?
0: अरे अंदर?
1: फिर वो टॉम से कहता है,
4: जा बुकु मो सुगु सोच्ची नी इकुने?
0: तो फिर मैं भी फौरन उधर पहुँचता हूँ।
1: टॉम जवाबन कहती है,
3: वकारिमास्ता।
0: ठीक है।
1: कुछ देर में काइटो टावर के अंदर आता है और इधर उधर नजरें दौड़ाता है। मियाँ उसे देख लेती है और उसे मुखातिब करती है।
3: आह, काइटो।
0: अरे काइटो।
3: कोच्ची कोच्ची।
0: इधर इधर।
1: काइटो फौरन उनके करीब पहुंचता है और कहता है,
4: गोमें, ओसुकु नत्ते।
0: माजरत, मुझे देर हो गई।
1: चलें, अच्छा हुआ इन्होंने जल्द एक दूसरे को ढूंढ लिया।
0: घंटाघर सफेद रंग की दो मंजिला चौबी इमारत है। बड़ी घड़ी उसकी सुर्ख छत पर नस्ब है। ये घंटाघर 1878 में तामीर किया गया था।
1: तो आइए आज का मुकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
2: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے, گھنٹہ گھر کے اندر ہوں۔
3: ٹوکے دائی نو ناکا نی ایمس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی موجودگی کا مقام بتا سکتے ہیں۔
0: ٹوکے دائی کے معنی ہے گھنٹہ گھر, اور ناکا یعنی اندر۔ چنانچہ ٹوکے دائی نو ناکا کا مطلب ہوا گھنٹہ گھر کے اندر۔ نی مقام کے ساتھ استعمال ہونے والا حرف جار ہے, اور ایمس فعل ایرو یعنی موجود ہونا کی مس شکل ہے۔ آج کا نکتہ, اپنی یا کسی اور کی کہیں موجودگی بتانے کے لیے فعل ایمس استعمال کیا جاتا ہے۔
1: گزشتہ سبق میں اسی معنی میں فعل اریماس استعمال کیا گیا تھا, تو ایمس اس سے کس طرح مختلف ہے؟
0: ایمس بنیادی طور پر انسانوں یا دیگر جانداروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جبکہ بے جان اشیاء کی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے فعل اریماس استعمال ہوتا ہے۔
1: اچھا, جاندار اور بے جان کا فرق, ٹھیک ہے میں سمجھ گئی۔
0: کسی کو اپنی موجودگی کا مقام بتانے کے لیے اس جگہ کے نام کے بعد حرف جار نی لگائیں, اور آخر میں فعل ایمس۔ مزید وضاحت کے لیے کسی مشہور مقام کا حوالہ دینا بہتر ہوگا, جیسا کہ آج کے کلیدی جملے میں ہے, توکے دائی نو ناکا نی ایمس, یعنی گھنٹہ گھر کے اندر ہوں۔ اس جملے میں الفاظ کی ترتیب یوں ہوگی, پہلے مشہور مقام کا نام, پھر حرف جار نو, پھر مشہور مقام کے حوالے سے اپنی جگہ, مثلا اندر, سامنے, دائیں بائیں وغیرہ, اور آخر میں نی ایمس۔
1: کلیدی جملے میں مشہور مقام توکے دائی یعنی گھنٹہ گھر, اور اس کے حوالے سے اپنی جگہ ناکا یعنی اندر, ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: ٹوکے دائی نو ناکا نی ایمس, ٹوکے دائی نو ناکا نی ایمس۔
1: جی سامعین, یقیناً آپ نے عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب فون پر ہونے والا ایک مکالمہ سنیے۔ ایک شخص مخاطب کو اپنی موجودگی کے مقام کے بارے میں بتا رہا ہے۔
6: 今どこにいますか？改札の前にいます。
0: और अब मकान में की तशरी
6: इमा दो को नहीं मस का
1: अभी आप कहाँ हैं
0: इमा के मायने हैं अभी या इस वक्त और दो को नहीं इमस का यानी कहाँ हैं लफ्ज दो को यानी कहाँ आप पहले सीख चुके हैं
6: काइसत्स नो मायने इमस
1: टिकट गेट के सामने हूँ
0: काइसत्स रेलवे स्टेशन के टिकट गेट को कहते हैं और माय यानी सामने चुनांचे काइसत्स नो मायने का मतलब हुआ टिकट गेट के सामने
1: अब सुनिए और दोहराइए
5: 今どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
0: अब कुछ और मकामात के साथ मशक करते हैं। फर्ज करें आप किसी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर हैं, तो ये बात आप दूसरे शख्स को किस तरह बताएंगे? कन्वीनियंस स्टोर को जापानी में कहते हैं
5: कोम्बिनी, कोम्बिनी।
0: और अंदर को नाका, तो सामीन कोशिश करें
3: कोम्बिनी नो नाका नी इमास, कोम्बिनी नो नाका नी इमास।
0: और अगर आप मालूमाती मरकज के बराबर में खड़े हैं तो ये बात किस तरह बताएंगे? मालूमाती मरकज की जापानी उसके अंग्रेजी मुतबादिल यानी इंफॉर्मेशन सेंटर की मुख्तसर शक्ल है
5: इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन।
0: और बराबर में को कहते हैं
5: योको, योको।
0: जी सामीन कोशिश करें
3: इंफॉर्मेशन नो योको नी इमास, इंफॉर्मेशन नो योको नी इमास।
1: जी सामीन, आपने यकीनन दुरुस्त जुमले बना लिए होंगे।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला ताम का जुमला है जो उसने फोन पर कायतो से कहा था, इसे इसी तरह याद कर लें।
3: वकारीमाश्ता,
0: वकारीमाश्ता के मायने है ठीक है या समझ गया। ये इस बात का इजहार है कि आप मुखातिब की बात अच्छी तरह समझ गए हैं।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
7: वकारीमाश्ता।
1: सामीन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
5: वकारीमाश्ता।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपनी मौजूदगी का मकाम बताती है।
2: もしもし, ताम-san, 今どこにいるの?
3: 時計台の中にいます。
2: え, 中? じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。 あ、 カイト, こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
8: ハルさんの知恵袋。
1: अब हारू सान की जंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान की कन्वीनियंस स्टोर्स।
0: इरा, जापान के कन्वीनियंस स्टोर्स के बारे में आपका क्या तासुर है?
1: ये वाकई कन्वीनियंट यानी बासहूलत हैं। इसलिए मैं इनसे अक्सर खरीदारी करती हूँ और कभी कभार तो किसी से मुलाकात के मकाम के तौर पर भी इस्तेमाल करती हूँ।
0: जी, कन्वीनियंस स्टोर्स जापान के हर इलाके में पाए जाते हैं और इन्हें ढूंढना भी काफी आसान होता है। ज्यादातर कन्वीनियंस स्टोर साल भर 24 घंटे खुले होते हैं। इनमें तैयार खाने, सैंडविच, मिठाइयों और मशरूबात से लेकर स्टेशनरी और मैगजीन तक यानी रोजमर्रा इस्तेमाल की वसी अकसाम की चीजें दस्तियाब होती हैं। बाज में तो शैम्पू, साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, मोबाइल फोन की बैटरियाँ और जेर जामे और मोजे तक दस्तियाब होते हैं।
1: यानी इनमें रोजमर्रा जिंदगी की तमाम ही चीजें दस्तियाब होती हैं।
0: जी हाँ, तकरीबन तमाम ही चीजें। इनमें नस्ब एटीएम से रकम भी निकलवाई जा सकती है और यहाँ से इंटरनेट के जरिए खरीदे गए टिकट वगैरह भी वसूल किए जा सकते हैं। ये वाकई कन्वीनियंस यानी सहूलत के हामिल स्टोर्स हैं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 22 जुलाई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वायला कवानो से सुने समाचार। जापान भीषण गर्मी की चपेट में है। उच्च दाब तंत्र के कारण तापमान लगातार दूसरे दिन भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। मिए प्रीफेक्चर के कुवाना शहर में बुधवार को दोपहर 2:20 पर तापमान बढ़कर 40.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। शिजुओका प्रीफेक्चर के हामामात्सु शहर में दोपहर 1:50 पर 40.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और गिफू प्रीफेक्चर के ताजिमी शहर में दोपहर 2:20 पर 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कई अन्य शहरों में भी तापमान 39 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया कि सोमवार को कांतो कोशिन और तोकाई क्षेत्रों में बारिश का मौसम समाप्त हो गया है। टोक्यो के दमकल विभाग का कहना है कि मंगलवार को तापघात के संदेह में 287 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। मौसम विज्ञान एजेंसी ने 41 प्रीफेक्चरों में तापघात की चेतावनी जारी की है। लोगों को तापघात से बचने के लिए एयर कंडीशनर का उपयोग करने और पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही लोगों से लंबे समय तक बाहरी गतिविधियों से बचने का आग्रह किया जा रहा है। एक सुरक्षा कंपनी के अनुसार 13 जुलाई को जापान की प्रमुख फ्रोजन फूड कंपनी निचेरई पर हुए साइबर हमले की जिम्मेदारी रैंसम हाउस नामक हैकर गुट ने ली है। साइबर हमले के कारण 13 जुलाई से कंपनी का सिस्टम ठप पड़ गया, जिससे कोल्ड स्टोरेज संचालन और फ्रोजन फूड की आपूर्ति बाधित हो गई। सुरक्षा कंपनी SNJ ने कहा कि रैंसम हाउस हैकर गुट ने मंगलवार को एक डार्क वेबसाइट पर बयान पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया है कि उसने निचेरई कंपनी का कुछ आंतरिक डाटा चुरा लिया है। यह गुट रैंसमवेयर हमलों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। पिछले साल अक्टूबर में इसने कथित तौर पर जापानी ऑनलाइन रिटेलर असुकुरु पर साइबर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिससे कंपनी के सिस्टम में व्यवधान पैदा हो गया था। जापान में कई कंपनियां रैंसमवेयर हमलों का शिकार हो चुकी हैं और इन हमलों के दौरान हैकर्स फिरौती मांगने से पहले कंप्यूटर और सर्वर डाटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बाद सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सिरस्की को बर्खास्त कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मिखाइलो द्राप्ती सिरस्की की जगह लेंगे। ये विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए जब ज़ेलेंस्की ने इस महीने की शुरुआत में रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोफ को प्रभावी रूप से बर्खास्त कर दिया था। फेदोरोफ ने सैन्य सुधारों को बढ़ावा दिया था और जनता का समर्थन हासिल किया था। खबरों के अनुसार उनके सिरस्की से मतभेद थे, जो कुछ सुधारों का विरोध कर रहे थे। फेदोरोफ को पद से हटाए जाने के खिलाफ जनता का आक्रोश जारी रहा। प्रदर्शनकारी उनकी बहाली और सिरस्की को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के ध्रुव दक्षिणी द्वीप के पास स्थित उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड में एक चीनी नौसैनिक पोत द्वारा किए गए गोलीबारी अभ्यास को लेकर जापान की चिंताओं को चीन ने खारिज कर दिया है। जापान सरकार ने पुष्टि की है कि रविवार को प्रशांत महासागर में ओकिनोतोरी शिमा द्वीप से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जापान के ईईजेड के भीतर चीन के मिसाइल विध्वंसक पोत ने मशीन गन से प्रशिक्षण किया। जापान ने राजनयिक माध्यमों से चीन को अपनी चिंताओं से अवगत कराया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में जापान की आपत्तियों को निराधार बताया। ओकिनोतोरी शिमा का उल्लेख करते हुए उन्होंने चीन के पूर्व तर्क को दोहराया कि ये एक चट्टान है, द्वीप नहीं, और इसलिए इसे ईईजेड या महाद्वीपीय शेल्फ का अधिकार नहीं है। प्रवक्ता ने तर्क दिया कि खुले समुद्र में चीन की गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जापान अन्य देशों के वैध और कानूनी अभियानों को बदनाम कर रहा है और बाहरी खतरे का डर पैदा कर रहा है। उन्होंने जापान पर अपने सैन्यीकरण को तेज करने और युद्ध पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देने का बहाना खोजने का आरोप लगाया। जापान सरकार का कहना है कि वो इस क्षेत्र में अपनी निगरानी और सर्वेक्षण अभियान जारी रखेगी। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। सितंबर में लागू हो जाने के बाद ये यूरोप में इस तरह का पहला उपाय होगा। फ्रांस की संसद के दोनों सदनों, सीनेट और नेशनल असेंबली ने मंगलवार को इस विधेयक को मंजूरी दी। सितंबर में नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के साथ ही 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मौजूदा अकाउंट बंद करने के लिए जनवरी तक 4 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म्स को फ्रांसीसी गोपनीयता नियामक द्वारा अनुमोदित आयु सत्यापन का भी उपयोग करना होगा। उम्र के आधार पर प्रतिबंध लगाने के कदम बच्चों पर सोशल मीडिया के संभावित नकारात्मक प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंता दर्शाते हैं। ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। यूरोपीय संघ भी नियमों पर विचार कर रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा है कि गर्मियों के बाद इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। जापान की प्राचीन राजधानी नारा में पर्यटक एक संगीत वाद्य फ्रेंच हॉर्न बजाकर वन्य हिरणों को बुलाने का आयोजन देखकर आनंदित हो गए हैं। एक सदी पुराने इस कार्यक्रम को शिकायोसे कहा जाता है और ये वसंत, ग्रीष्म और शीत ऋतु में सीमित समय के लिए आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम 19 जुलाई से शुरू हुआ। हिरण संरक्षण समूह के एक सदस्य ने वाद्य पर जब बिथोवेन की पास्टोरल सिम्फनी बजाई तो खासुगा ताइशा श्राइन के परिसर में एक खुले मैदान में लगभग 100 हिरण दौड़कर आ गए। समूह के सदस्यों ने हिरणों को बलूत के फल खिलाए और हिरण उन्हें खाने की होड़ में जुट गए। गर्मी के मौसम में हिरणों को पुकारने का कार्यक्रम 6 सितंबर को छोड़कर 27 सितंबर तक हर रविवार को आयोजित किया जाएगा।
2: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान भीषण गर्मी की चपेट में है। उच्च दाब तंत्र के कारण तापमान लगातार दूसरे दिन भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। एक सुरक्षा कंपनी के अनुसार 13 जुलाई को जापान की प्रमुख फ्रोजन फूड कंपनी निचिरे पर हुए साइबर हमले की जिम्मेदारी रैंसम हाउस नामक हैकर गुट ने ली है। और फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया। और इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।